0: 服部家で有名な部分を起こす ये तनाव के कारण ऐसे हुए हैं। बिजली के सामान की मैं बाजार का चार चार रुपए पोसल जा रही होते ही पाऊं। ओह अब उस सामान में ना कहानों नहीं जानने पड़ने की क्यों? बहुत बहाना तीन तरह कस्टमर सामान आना शुरू। बिजली के सामान में ना कहानों की ना जाने हम रे शुरू में ना सब कुछ उपाय शादा। ए ओरा दीदी कहाँ पाएं छा मैं तो खुशदा खुशदा था कि सके हो लसुन बने सुनो दुख में नगर पालिका उड़ान में पास में उन्हें को शांति स्टोर एंड सप्लाई करनी यह दूसरी का संपूर्ण नया सावन हुए होलसेल तथा खुदरा मूल्य ना पाएं छा बोर्ड आधुनिक सीट वाइडिंग का सामान जी खुशी उत्ते ही तैयार लो नए सामान पने पाने पुराने सामान पने मरमत हुए मैं तो बिना खुशदा बेहतर मेरे रस्ते भरने दीदी
1: हजुर बिजुली को भरपर्दो सह यात्री शांति स्टोर एंड सप्लायर्स सोलू दुखुंड नगर पालिका वड़ा नंबर 5 सल्लेरी सोलू खुंडो यहाँ बिजुली का संपूर्ण सामान होलसेल तथा खुदरा मूल्य में पाने का साथ ही नया तथा पुराना सामान मरमत पनि गरिन्छ थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर गुरु कुल नारायण श्रेष्ठ 9763007784 विवेक श्रेष्ठ 9862682000 सुनो दुखकुंडा नगरपालिका पास सही

0: money. सोनु FM 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुदकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: त्रिभुवन एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: डिजिटल
2: कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sunshine, Sony FM, Studio Time.
2: It's 10 a.m. We have to go busway.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुम नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू

0: सब जना हित में जारी संदेश
1: पोषण युक्त खाने पूरा जीवन का रंग हरू पूरा मन माता की तन्मा
0: स्वास्थ्य जीवन को आधार हो संतुलित और पोषण युक्त आहार

0: गोलू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य फिल्म स्टूडियो टाइम
2: लाइन एयर बिहान को 11 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुर्गुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
3: सौसे कार्यालय को जनहित में जारी संदेश
4: पोषण युक्त खाने पूरा जीवन का रंग हरू पूरा मन माता के तन मन
5: स्वास्थ्य जीवन को आधार हो संतुलित पोषण युक्त आहार विशेष करी गर्भवती महिला सुत्केरी आमा र 5 वर्ष मुनि का बाल बालिकाहरूलाई पोषण युक्त खाना को विशेष आवश्यकता पर्दछ दैनिक खाना में दाल भात हरियो तरकारी फल फूल दूध तथा अन्य पोषण युक्त खानेकुरा समावेश गरौं जन्मेको एक घण्टा भित्र शिशुलाई स्तनपान गराऊ 6 महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाऊ 6 महिनापछि स्तनपान सँगै उमेर अनुसारको पूरक खानेकुराहरू शुरू गराऊ आइरन भिटामिन ए र जिंक युक्त खानेकुरा नियमित सेवन गराऊ जंक फूड धेरै नुन र अस्वस्थकर खानाबाट टाढा रहौं कुपोषणले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पार्ने गर्छ त्यसैले हामी सबै मिलेर पोषणयुक्त समाजको निर्माण गरौं जिल्ला स्वास्थ्य

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी अदलित व ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाहन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुख सुनवाई संपर्क राख् सकने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
0: आर्थिक वर्ष 2084-84 का प्रदेश संचालन कर आयोजना कार्यक्रम को प्रस्ताव आवन संबंध में कोशी प्रदेश योजना आयोग
2: आयोजना को वर्गीकरण आधार तथा मापदंड निर्धारण और आयोजना वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2082 बंदुसम स्थानीय तह प्रदेश कार्यालय आर्थिक रूप से 2084-84 में कार्यान्वयन होने आयोजना कार्यक्रम के संबंध में इस आयोग मिति 2082 साल चैत्र 9 गते आयोजना वन सूचना प्रणाली मार्फत प्रस्ताव आह्वान भएको हुनाले 2083 साल वैशाख 5 गते घटना प्रणाली को प्रयोग मार्फत आयोजना प्रस्ताव गर्न हुन उक्त प्रदेश सरकार मार्फत कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई जानकारी को लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। साथ ही आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा स्थानीय नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तह र संस्थाको कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीय तह तथा आयोजनाको सम्बन्ध कार्यक्षेत्रमा रहेको प्रदेश कार्यालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ। प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना विस्तृत आयोग को वेबसाइट ppc.kc.gov.np हेन सभी में इस सूचना मार्फत अनुरोध कर
0: कोशी प्रदेश सरकार प्रदेश योजना आयोग विराटनगर नेपाल नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदलित व ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाहन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुख सुनवाई संपर्क राख् सकने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
0: स्थानीय तह में दर्ता भएका ई रिक्सा को दर्ता प्रतिनिधि तथा नवीकरण करने संबंधी सूचना
1: यातायात व्यवस्था कार्यालय में दर्ता भई स्थानीय तह में हस्तांतरण भएका ई रिक्सा पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालय में दर्ता गर्दा यदि कार्यालय जारी गरेको सकल बिल भएमा सोको आधार में स्थानीय तहबाट सुरुवात फिर्ता गरेको निष्ठा समेत राखी सोही दर्ता नंबर कायम होने गरी अभिलेख खड़ा गरिनेछ। यदि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले जारी गरेको सकल बिलभुक नभएको तर स्थानीय तहले जारी गरेको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र बिलभुकमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले जारी गरेको सवारी दर्ता नम्बर समेत उल्लेख भएको खण्डमा स्थानीय तहले जारी गरेको सकल सवारी दर्ता प्रमाणपत्र राखी प्राधिकरणको नम्बर कायम गरी बिलभुकको प्रतिलिपि दिनेछ। त्यसै गरी यदि यातायात कार्यालयले दिएको जाँच पास प्रमाणपत्रको सकल करेमा पनि सोही सकल पत्र को आधार में यातायात कार्यालय जारी गरेको दर्ता नंबर कायम गरी सवारी दर्ता प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि जारी गरिनेछ। सोझै स्थानीय तह में दर्ता भएका वा यातायात व्यवस्था कार्यालय में दर्ता भई स्थानीय तह में हस्तांतरण भएका यी रिक्साहरूको सवारी दर्ता अभिलेख किताब स्थानीय तह में जेएनजीको आंदोलन को क्रम में जली नष्ट भएको अवस्थामा स्थानीय तह में दर्ता भएका एवं कर चुक्ता गरेको प्रमाण को आधार में सकल सवारी दर्ता प्रमाण पत्र बिलबुक समेत राखी सरुवा दर्ता सरह दर्ता गरिनेछ। सेवा ग्राहीले नागरिकताको फोटो कपी दुई प्रति हालसालै खिचिएको फोटो सवारी दर्ता प्रमाण पत्रको फोटो कपी सवारी साधनको इन्जिन नम्बर र चेसिस नम्बर देखिने गरीको फोटो सवारी साधनको पूर्ण भाग देखिने गरीको फोटो संलग्न राख्नु पर्नेछ। यदि स्थानीय तहमा सवारी कर तथा नवीकरण समेत गरिएको भएमा उक्त शीर्षकमा थप कर लाग्ने छैन।

ज्ञापन तथा सूचना बाबू वस्तु सेवा को मूल्य मात्रा म्याच सके मुखी गुणस्तर एकिन करे खरीद बिक्री करौं। वस्तु व सेवा को प्रयोग कने हानि नुकसानी भे स्थानीय प्रशासन में उजुरी करौं। वस्तु तथा सेवा को प्रयोग स्थिति पुगे क्षतिपूर्ति मगौं। निष्पक्ष तथा तथ्यपूर्वक सूचना पाने उपभोक्ता अधिकार को रक्षा करौं। भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना को कारण उपभोक्ता ठगे स्थानीय प्रशासन में उजुरी करौं। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में

0: প্রহেলায় খবর করে কাঠি নেপাল দর্পণমা খবরকো সিলসিলা বাঁকি নেই সুন্দর গর্নুহোলা
1: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँमा पायल्स फिस्टुला फिसर लगायतका रोगहरूको दैनिक विशेषज्ञद्वारा परीक्षण परामर्श तथा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।
2: विशेषज्ञ सेवाहरू निशुल्क शल्यक्रिया सेवा अनुभवी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सकद्वारा उपचार छाल सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको सुविधा दैनिक ओपीडी तथा शल्यक्रिया सेवा
1: रोग लुकाएर नराखौं समयमै परीक्षण गरौं।
2: थप जानकारीका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँ फोन 01-4110-6690 41106 96
3: स्वस्थ जीवनका लागि

0: नगरपालिका में शत प्रतिशत धान रोपाई संपन्न सेवन समिट फाउंडेशन को 15 वार्षिक साधारण सभा संपन्न टापटिंग को बुद्ध मूर्ति निर्माण काप सहयोग काठमाडौं में महाकुलन गांवपालिका को घुमती प्रशासनिक शिविर संचालन होने साना सिंचाई कार्यक्रम द्वारा खड़ुआ का 243 वटा कूलो निर्माण देवगंज घटना का मृतक का परिवार 2 लाख राहत दिने कोशी प्रदेश सरकार को घोषणा प्रकृति का मुद्दा में सुनवाई में प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न सर्वोच्च को आदेश 9 वटा विधेयक संसद में पेश कर मंत्री परिषद को स्वीकृति कर्णाली प्रदेश का मुख्यमंत्री शाही ने लिये शपथ चीन ने ईरान घाट प्रहार कर मिलने क्षेत्रस्थ प्रणाली उपलब्ध कराने जापान में भूकंप 13 जना को जान गयो शपिंग सेंटर में फसिकार को दर्शन टी ट्वेंटी बाटिंग वरीयता में वैभव सूर्य वंशी एक पटक 230 स्थान माथि उक्लिए अवस्था 5:07 बजे को सोलो समाचार शाखा का सहकर्मी सिंह सरस्वती पुरी रु कार्की विदा होली बिहान 7 बजे सोलो समाचार लेकर फिर आने सूचना शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का नमस्कार।
1: यदि तपाईं को बसामा सोमसात कोइताला घुमेको क्लबफुट समस्या छ भने उपचारको लागि अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा वडे स्थापना केन्द्र एसआरडीसी काफ्री कुमिपा नगरपालिका 11 र प्रादेशिक कार्यालय इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 सुनसरीमा तुरन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्ता समस्या भएमा वार्षिकबाट फोटो पठाएर सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ भने साथै विपन्न गरीब परिवारका लागि उपचारमा विशेष छुट गरिनेछ। थप जानकारी का लगी संपर्क नंबर 98 52 55 768 अंक 9852 055 768

0: टोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. Studio time.
2: It's 8 p.m. रातको 8 बजे.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस. सोनू दूध को नगर पालिका 5 सोनू खुम्बू.
3: Wherever you are.
4: प्रसारण भएको कार्यक्रम बदलिदो नेपालको पुनः प्रसारण

0: नेपाली सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखरी जिला को मिलन क्षेत्र
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नयाँ नयाँ वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: उखलढुङ्गा र खोटाङको विज्ञान बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विस सेवा
2: एक्सचेंज गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरे भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुङ्गाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिश्रम नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजान ओखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852988002 र 9842808300

0: नागरिकता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदलित व ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय पूर्वाहरी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष मुक्ति को सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख्व अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन न करी आपको सेवा लीन हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आईन गुनासो सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुख संपर्क राख्व सकू
1: कोची प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर।